0: समुद्र सुख दयामना
1: परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
0: परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
1: निराकार सुआधार एक राम नाम
0: निराकार को
1: एक राम नाम
0: निराधार को आधार एक राम नाम
1: परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम जनर सदा बसत एक राम
0: नाम
1: माता पिता बंधु सखा

या बारी खुदा खुदा वंदे आलम रा हमें अंजुमन रा बा फरजंदान हजार साल देर बेदार शाद बेदार तंदुरुस्त बेदार ऐ दुन बेदार बरसरे अरजान।

0: अब घर चले।
1: एक मिनट बेटा, अभी चलते हैं।
2: बाबू भैया, अल्लाह के नाम से भैया, अल्लाह मुहताज के भैया।
1: बेटा एक मिनट रुक जाइए, फकीर को पैसा दे दें।
2: अल्लाह भला करे, अल्लाह बच्चे खुश रहे।
3: दादा जान, क्या इस्लाम में गरीबों की मदद करना भी एक फर्ज है?
4: हाँ बेटा बिल्कुल है। गरीबों और दीन दुखियों की मदद करना इस्लाम में बड़े सवाब का काम माना गया है, इसीलिए हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़कात देना फर्ज है।
1: समझ गए बेटा?
3: हाँ।
1: अब चले?
3: हाँ चलिए।
5: द मंथ ऑफ रमजान इज कंसिडर्ड होली बाय मुस्लिम्स। इट वॉज एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इन द 7th सेंचुरी दैट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, डिक्लेयर्ड द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह टू मैनकाइंड। The Holy Quran had also been written in this month. To express their gratitude to Allah, Muslims all over the world remained without food or water from sunrise to sunset for 30 days.
6: Mubarak ho, Mubarak ho! Ramzan ka chand nikal aaya.
1: Abbu, Mubarak ho.
7: Mubarak ho. Aapko bhi Mubarak ho. Chalo bhai, inshallah kal se roze shuru.
8: मैं भी रोजे रखूंगा दादा जान।
7: हाँ हाँ बेटा बिल्कुल रखिए।
8: लेकिन तुम्हारी तो अभी रोजे कुशाही नहीं हुई।
7: तो क्या हुआ रहीम मियाँ, आप रोजा रखिए, रोजे कुशाही तो अपने आप हो जाएगी।

0: उठो बेटा, रहीम करीम। अरे बेटा उठ जाओ जल्दी से, सरी का वक्त हो गया है। उठो बेटा, वक्त बहुत तंग है, उठ जाओ।
1: उठ तो गए हैं अम्मी।
0: हाँ शाबाश,
2: वक्त हो गया।
1: अम्मी जान, सरी खाने के बाद दिन भर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा?
0: नहीं बेटा, रोजे में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते, शाम को अफ्तार के वक्त ही रोजा खोलकर खाया पिया जाता है।
1: रोजे क्यों रखे जाते हैं दादी जान?
3: बेटा, इसी महीने में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम दुनिया के सामने पेश किया। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान साल में एक महीने रोजे रखते हैं और अपने रब की खुशनुदी हासिल करते हैं।
4: और बेटे, रोजा रखने से इंसान की सेहत भी ठीक हो जाती है, दिल और दिमाग से बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं और रूह साफ और पाक हो जाती है।
5: हजरत, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं।
0: बेटा जल्दी करिए, देखिए सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करिए बेटा।
6: बेटा जल्दी करिए,
0: 2 मिनट बचे हैं। पानी पीजिए जल्दी से।
1: जी अम्मी,
0: पानी पीजिए जल्दी से फटाफट।
4: हाँ भाई, आप लोगों ने सहरी कर ली?
6: जी।
4: चलिए अब हम लोग रोजे की नियत करते हैं।
0: जी।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
4: बिस्सौमिगदिन
7: नवायतो
4: लिल्लाह ताला,
7: लिल्लाह ताला,
4: मिन शहर रमजान,
7: मिन शहर रमजान।
4: अब हम लोगों की रोजे की नियत हो गई, अब हम लोग चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने।
6: जी चलिए।
8: द न्यू मून इज साइटेड, द फेस्टिवल ऑफ ईद सिग्निफाइज द एंड ऑफ द मंथ ऑफ प्रेयर्स एंड फास्टिंग। Muslims all over the world greet each other with love and joy. It is time for feasting and celebration.
1: Mubarak ho, Mubarak ho, Eid ka chand ho gaya, Eid ka chand ho gaya.
9: Mubarak ho, Mubarak ho.
0: अम्मी जान, आपको बहुत बहुत मुबारक,
9: बहुत बहुत मुबारक हो।
6: अम्मी जान चांद मुबारक हो।
0: मुबारक हो बेटा।
6: अबू जान आपको भी मुबारक हो।
5: मुबारक हो, मुबारक हो भाई।
8: अबू जान और फादर कीप्स हिज वर्ड। The entire family travels to the holy city of Mecca in Saudi Arabia for Hajj. Islam proclaims that every pious Muslim who has the means to do so must make a pilgrimage to the holy city of Mecca at least once in his lifetime.
10: Islam ka panchwa khas rukn hai Hajj. Har sahib-e-haisiyat Musalman par Hajj farz hai. हज के लिए पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का में जमा होते हैं। इस साल रहीम और करीम के वालिद, वालिदा, दादा जान और दादी जान भी हज करने मक्के मुअज्जमा तशरीफ लाए हैं। हज के दौरान सफेद कपड़े बगैर सिले हुए पहने जाते हैं, जिन्हें एहराम कहते हैं, जो हर हाजी को पहनना लाजमी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा। इस लिबास में सब एक से दिखते हैं। ऊंच नीच की सारी दीवारें यहाँ खत्म हो जाती हैं। हज के दौरान काबा शरीफ का तवाफ किया जाता है।
11: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
12: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
11: इन्नल हम्द।
10: मुकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज अदा की जाती है।
11: ला शरीक
12: लक
11: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
12: लब्बैक अल्लाहुम्मा।
10: जमजम का पानी पिया जाता है।
11: शरीक लक लब्बैक,
12: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
11: इन्नल हम्द,
12: इन्नल हम्द,
11: वन निअमत,
12: वन निअमत।
10: सफा और मरवा की पहाड़ियों की सही की जाती है। मिना के मैदान जाते हैं, अरफात की पहाड़ी पर दुआ मांगते हैं और फिर मिना वापस आकर शैतान को कंकड़ी मारते हैं।
11: इन्नल हम्द,
12: इन्नल हम्द,
11: वन निअमत,
12: वन निअमत,
11: लक वल मुल्क,
12: लक वल मुल्क,
11: ला शरीक लक।
10: फिर कुर्बानी करके सर मुंडवाते हैं।
11: اللهم لبيك
12: لبيك اللهم لبيك
11: لبيك لا شريك لك
12: لبيك لا شريك لك.
10: اس طرح حج مکمل ہوتا ہے اور ایک مسلمان گناہوں سے پاک ہو کر ایمان کی صورت میں واپس اپنے اپنے ملک پہنچتا ہے. یہی ہے اسلام مذہب جس کے نور نے آج سے 1500 سال پہلے تاریخ دنیا کو منور کیا تھا, اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ اپنی روشنی سے سارے عالم کو جگمگاتا رہے گا.

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रंथ सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भज्यो नारग पत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पए खालसे प्रेम भगत जह जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन और ना देखा। नैन रहे रंग लाई या बेगल कहन ना जाई। हमरा परम गया पौ पागा जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजी गर डंक बजाई सब खलक तमा से आई। बाजी गर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई। जा कहो गुरमुखिया बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी। कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुद बिलोबन कौ माटा। ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी। तू अजो ना चेत चेरी तू जम्बपरी है हेरी। प्रभ करन कराम नहारी क्या चेरी हाथ बिचारी। सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका और न पहजाना चूका। जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया क्या वेद पुराना सुनिया। पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए। बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै ना पतीजै तो क्या कीजै। हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी। काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना रहाओ। लौकी अड़सर तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई। कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी। सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर धन लियावै। सुधारा बयान लुटावै मन मेरे पूले कपट ना कीजै। अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा
हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ। दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना। अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। खाट

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरव दास चुमारा, चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हमर गंठे जाए पहुंचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो।

साहिब मेरा नीतनमा सदा सदा दातार रहाओ। अंदन साहिब सेवी है अंत छाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सदकुर बन जाओ, रहाओ सरबंग साचा एक है।

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवे दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाहीं कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुर सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास।